चितवो चितवनि उद्यम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहरो हर देव नानक के मीत। सोहिलारा गौड़ दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ब्रह्म ज्ञानी सगल करी ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी की ना ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर मैया ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा ना पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दर समर्थ वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समा ब्रह्म ज्ञानी पर पार महा ब्रह्म ज्ञानी के ना ही धंधा ब्रह्म

ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर, कई कोट पे घात मिन कोर, कई कोट पर दर कोरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया सर माए, कई कोट पर देश पर माए, जित जित लावो तत लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सह जति जोगी, कई कोट राजा भोगी, कई कोट पंखी सर पाए, कई कोट पात्र वेखने पजाए, कई कोट पवन पानी बैसांतर, कई कोट देश पर मंडल, कई कोट ससिय सूर नखत्र, कई कोट देवदान मिंदर सह सतर, सग समगरी अपने सूतार, नानक जस जस पावे तस नस्तार, कई कोट राजता साधक, कई कोट वेद प्राण सिमर त्यार शास्त्र, कई कोट की रतन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की चर्ची वे, कई कोट की मीठ सुबंधी वै, कई कोट जाखिन प्रसाद।

आंदन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ही ऊपर से जान की आसा तिसकी कटिए जम की भाषा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नान किसे ना लागे दुख जिस को हर प्रभु मन चित आवे सो संत से हिला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवकाऊ कैसे डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तासा बुझिया जब देखूं तब सब कुछ मूल नानक सो सुकम सोई सथूल न कुछ जन्मे न कुछ मरे आपन चले ताप ही करे आवन जावन दृष्टान दृष्ट आज्ञा कारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत रज था विताप अविनाशी ना ही कुछ खंड धारण धारियो ब्रह्मांड अलख पे पुरख प्रताप आप जपात नानक जाप जैन प्रभु जाता सो सोभा बंत सगल संसार उदय धन मंत प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दूप उसारण आपे मेल लेकर पाल गुरका जब तपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृत

से जनते पताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुबर परे प्रेम रस रंग पुजे चाओ साध के संग परे सन नान सत्य आ गया अंतर प्रकाश अन्न दिन लाग बट भागी जपया प्रभ सोए।

जब कारिक सुना देष्टा पापम तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कुमात, जब इसका वर्ण चह न जपत तब हर किसो को किसे व्याप्त, जब अपने आप आप पार ब्रह्म ता मोह कहां किसो पद भरम, अपन खेलिया प्रतीजा नानक कर निहार न दूजा, जब होत प्रभ केवल।

तब चित्रगुप्त कैसे पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर गाता है तो कौन छूटे कौन बंधन बाध है। अपना पापी अचर जा, नानक अपन रूप पियो पर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पतोता।

ताके अंत न पाए जा है, एहो अंत न जाने कोए, बहता कही है बहता होए। वड्डा सहाय ऊचा था ओ, ऊचे ऊपर ऊचा नाओ, एवड ऊचा होवे कोए, ते सूचे को जाने।

छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वार पौन पाणी अग्नि पाताल तिसवी धरती थाप रखी धर्म।

जन्म मरण विहीन चक्र वक्र फिर चतुर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जह जाप आल देव नाद मूरत थाप्यो सभय जह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचय स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देस धर्म धाम सो परम रहत अभूत लख भेस अंग रागना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंग ना तम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगणता सर्वहणता सर्वते अणपेख सर्वशास्त्र ना जान ही जह रूप रंग अर रेख परम वेद प्राण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आव ही वह चित मद पार्षंद त प्रसाद।

इंद्राण इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अणभूत अंग आपा भंग गत मित पार गुण गण उदार मुण गण प्रणाम निरपैन काम आत दुत प्रचंड मितगत अखंड।

अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्वा प्रसाद। सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता। अरसावल छंद त्वा प्रसाद। नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे। आगात स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वभंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते। नृसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवति छंद त्वा प्रसाद। कै जा हर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सल सलाम हैं समस्तल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी देहंद हैं के राजक रहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं। गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकन हैं हिरासल फिकन हैं कलंकंग प्रणास हैं समस्तल निवास हैं। अगंजल गणीम हैं अर्जायक रहीम हैं समस्तल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकंग प्रणास हैं वे हस्तल निवास हैं। कैसर बुलगवान हैं हमेशल रवान हैं तमामुल तमीज हैं समस्तल अजीज हैं परम परमीस हैं समस्तल अदीस हैं। आदेशल अलेख हैं हमेशल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं कजुर अजमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं। के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के अमितो अभंग हैं मधुपार छंद त्वा प्रसाद। मुण मन प्रणाम गुणगण मुदाम अर पर गंज हर नर प्रभंज अणगण प्रणाम मुण मन सलाम हर नर खंड पर नर अमंड अनुभव नास मुण मन प्रकाश। गुणगण प्रणाम जल थल मुदाम अणशज अंग आसन अभंग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत। अनुभव अनास त्रित धर तुरास अजान बाहो एक सदाहो ओंकार आदि कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम। अणशिज गात अजना बात अणझंझ गात अनरंज बात अणटुट भंडार अणठट अपार अढीठ धर्म अत ढीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत। हरि बोल मना छंद त्वा प्रसाद। करणालय हैं अरकालय हैं कल खंडन हैं मह मंडन हैं जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कल कारण हैं सर्ववारण हैं। त्रित के धरन हैं जाके करण हैं मन मान्य हैं जग जान्य हैं सर्वंग पर हैं सर्वंकर हैं सर्वपास्य हैं सर्वनास्य हैं करुणाकर हैं विश्वंबर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं कल खंडस हैं परते पर हैं करुणाकर हैं। अजपा जप हैं अथपा थप हैं अकृताकृत हैं अमृतामृत हैं अमृतामृत हैं करणाकृत हैं अकृताकृत हैं तरणी त्रित हैं। अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृताकृत हैं अमृतामृत हैं अजपाकृत हैं अमृतामृत हैं निर्णायक हैं खलकायक हैं विश्वंबर हैं करुणालय हैं। निरपनायक हैं सर्वपायक हैं पवभंजन हैं अरगंजन हैं रिपतापण हैं जप जापण हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ताकर हैं हर्ता हर हैं। परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्म बास हैं जासके जास हैं भुजंग प्रयात छंद। नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद।

0: पंथा प्रेम न जानाई भूली फिरे गुवार नानक हर बिसराए कै पौंदे नरक अंधियार माया मनु न विसरे मांगे दम्मा दाम सोबरा चेतनाया वाई नानक नहीं कराम तेचर मूल ना थोड़ी दा जितर आप कृपाल शब्द अखुट बाबा नानका खाही खर्च धन मार खंब बकंदड़े जी लहा कि ना सावी तूर तन जड़ाई अपना लहा सुसजन तूर सजन सदा पातशाहो
1: फिर शाह।

निरंजन सोए। जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणे निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा, जे तिस भावा विण पाणे के नाए करी। जे ती सिर ठुपाई वेखा विण करमा के, मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक। जे एक गुर की सिख सुने गुरा एक दे।

ले कुरान थे तवारना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव साला ही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाणा।

गोपी तै गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे कित कीते बोध आखे दान आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव किते आखे आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करहे ता आख न सके कई के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल उगाड़ तां लिखी है सिर गावा रागा बार सोदर केहा सो कर केहा जित बै सर्ब संभाले बाजे नाद अनेक असंखा किते भावन हारे किते राग परी सो कहियन किते गावन हारे गावे तुनो बौन बाणी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईसर ब्रह्मा देवी सोम सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवते अंदर नाले गावे से समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सार जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सही तदनो गावे जोत पावन नृत्य तेरे भगत रसाले होर किते गाव से मैं चितना आव नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो सी जाए न जासी रचना जिंद चाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन पाई कर कर वेख कीता अपना जब तिस दी वड़ियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहू साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरमपत झोली त्यान की ग्रह विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा परती ते आई पंथी सकल जमाती मन जीत है जग जीत आदेश सह आदेश आदनी लनाद अनाह तू जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया पंडारण कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्वैकार चलावे लेखे आवह भाग आदेश सह आदेश आदनी लनाद अनाह तू जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी कलाए दीवान जिव तिस भावे तिवै चलावे जिव होवै प्रमाण ओह वेखै ओना नदर न आवे बहुता एहो विडाण आदेश सह आदेश आदि नील नाद अनाह तू जुग जुग एको वेश

पावै। सदा सिफत सलाहा तेरी, नाम मन वसावै। नाम जिनका मन वस्या, वाजी शब्द कनेरी। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखां सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान कीता गुरु विटहो। जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनहो संतो। शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजी पंच शब्द तित घर सुभागा,

गुरु प्यारी साह संग जी, करो रसना पित्र, कोई भी रसना वांझी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुने हुने साहिब श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पए हन। आपां सारिआं ने ही गुरबाणी नूं सरवण कीता है। अत चंगे भाग हन अपने सारिआं दे, जो अपने स्वासां दी पूंजी नूं सफल करदे होए गुरबाणी दे नाल जुड़ रहे हैं। कोई पूर्वले चंगे कर्म तां इह समां बख्शिश हुंदा है। सानू सारिआं नूं कोशिश करनी चाहीदी है, घट्टो घट्ट स्वासां दा दसवंध जरूर कड्डो। माया दा दसवंध, पर उस तो उपर जिहड़ा है स्वासां दा दसवंध। जिहड़ा तुसीं स्वासां दा दसवंध कढ जाणा है, उह तुहाडे नाल जाणा है सारे दा सारा। उहनूं तुहाडे तों कोई नहीं खोह सकदा। माया तां आपां इत्थे छड जाणी है। कोशिश करो किसी का बुरा ना तको, किसी का बुरा ना सोचो, किसी बारे बुरा ना बोलो। ये नाल भी तुसी एक चंगे भागां दे मालक बन जाते हो, क्योंकि जिहड़े असी कर्म करते हाँ दरियावी तौर पर सारे देखते हैं भी इंसान की कर रहा है, पर साडे मन नूं एक परमात्मा ही देखता है। साड़ी कीती हुई सारी सेवा एक किसी का मारा तकन दे नाल, मारा सोचन दे नाल ही खत्म हो जाती है। जे तुसी 100 पुन किते हैं ना, एक किसी का माड़ा कर्म करता, वह सारी तुहाडे खत्म हो जाने, सारा लेखा जोखा देना पैना अपन। तो कोशिश करनी चाहिए अपन गुरबाणी नाल जुड़ के रहिए, किसी का माड़ा ना तकीए। अपने गुरु घर दे विच 27 जुलाई तो लैके 31 जुलाई तक बच्चों का कैंप लग रहा है। वो बीबी गुरप्रीत कौर जी मलेशिया तो अचेचे तौर पर आ रहे हैं बच्चों के कैंप में अटेंड करने लई। तो आप सारे वध बच्चे जिने कैंप के लैके आईए, ता कि उन्होंने असी सिक्खी के नाल जोड़ सकी। गुरद्वारा साहब स्टार्टन 17 अक्टूबर में एक गुरबाणी कंठ मुकाबला कराया जा रहा है। जिहड़े बच्चे उस विच भाग लेना चाहते हैं उन्हां दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वह करवा सकते हैं। तुसी वधेरे जानकारी लई फोन नंबर है जी 209-598-6581, मैं द्वारा फिर बोल रहा जी 209-598-6581 209-598-6581। मैं थोड़े विच बहुत थोड़े स्वासां नूं खराब ना करता होया, मैं अपने गुरु घर दे हजूरी कीर्तनीए भाई बलविंदर सिंह जी नूं कहना हाँ, वो आ के आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन दे नाल जोड़न। 1.25 घंटे वास्ते वो आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन दे नाल जोड़नगे। गुरु घर दे साडे लंगर हाल दे विच जिहड़े विघन पए हन, साध संगत जी तुसी भी जदों नितनेम करदे हो तां जरूर अरदास करिया करो, क्योंकि सतगुरां दे उपर कोई नहीं है। जे अरदास करांगे तां साडे सारे कार्ज हो जांदे हन। कोई भी कार्ज होवे सतगुरां दे मूहरे अरदास करो, जरूर पूर्ण हुंदा है। रहो विचार दे विच, आओ गुरबाणी कीर्तन नाल जुड़िए। कोई भी रसना बांझी ना रहे, जिन्ने शरीर हाजिर हन वह मन करके भी इत्थे रहन, तन करके नहीं मन करके भी। करो रसना पित्र, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।